0: आदरणीय श्रोता, प्रस्तुत सामग्रीहरूसँगै आजको कार्यक्रम जीवनको वचनको अब हामी अन्तमा आइपुगेका छौं। हामीलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम सुनेर तपाई आशिषित हुनुभएको छ। तपाईहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। श्रोता, अब कार्यक्रमलाई बीट मार्ने बेला भएको छ। साथै कार्यक्रम सुनेर तपाईहरूलाई बाइबल अध्ययन गर्न मन लागेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, हामी तपाईहरूलाई बाइबल उपलब्ध गराउनेछौँ। हवस् त श्रोता, आजका लागि म प्रस्तुता कुमराज पनि भोलि फेरि उपस्थित हुने वाचकका साथ विदा हुन चाहन्छु। तपाईलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।
1: एलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज।
2: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो। राङला योजना आइनबा परमेश्वरलाई योजना पालन लसुगो। जयमसी तथा लासो फ्याफुला नमस्कार। कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ अर्थात नला विश्वासी समक बसुगो अंक 11 रि राङ निदा स्वागत मुला ना वियोग तामाङ। राङसी लिच्छला दुई ला शक्ति देन मलाम तिक्दा अनुभव लस्युबा आरे बिसी सोचक लस्युबा ताबरे हमला। तिग चु राङसे तिग लाचेला बिबा बारेरी राङलान निनय कदे लस्युबा कारण से हिम्बा। थेन्दे तिग राङ दारेम राङला लुई लगा लागेरी सु शुबा योजना कदेला सट्टा राङला राङलान योजना कदेरी राङदा मोलाम पिनबरी बिन्ती लाभन मुसुला। न रंग दिदेन याकर्गी घटना गपरी से मुला जहाँ रंग से नला विश्वास गंभीर चुनौती पिनब मुबा। नाई याकर्गी प्रमुख शहरी निभा योजना शुभ मुबा जहाँ न पासर कदेदा सम्मेलन री सोम दिन ला लागिरी परमेश्वरला वचन लोप मुबा। बेनान योजना कदे तयार मुबा न निबारी तयार उत्सुक मुबा याकर्खी जखेन समस्या मुबा। परमेश्वर से गदा राङला आत्मज्ञान स्पष्ट रूपरी पङ्जी कि परमेश्वर ला नाथे ग्लारी निबारे सेम आला मुसुला। न परमेश्वर से गदा तिगा लाबरी पङ्जीव मुब बिसी ज्ञानबारी सेम मुला। नला लागिरी चु योजना मिला कादेदा ना हरंगलासी निराश लवरी हमला। यदि अहमनी विषम थेमी गदेसी गदर तिगा मनब मुला। थे बेनन प्रश्न गदे गला दिमागरी हाजी एरिमिया 10 अध्यायला ते येस। हे परम प्रभु गद था मुला कि मिला लुई थेला रंगलान आइनबा मिसे रंगला ज्ञान रंगसे निर्देशन आला मुला। यांगदा लाग गप्ता बारी हमला कि याङदा था मुला याङला लुइला लागिरी तिगा जब मुला देन याङदा था मुला याङ हाजीबा ग्याम पछप्ता लबारी सेम मुला। तासै जब याङ याङला सर्वशक्तिमान परमप्रभुला सामु राङदा नम्र सोबरी दम्स्यु मुला। याकर्गीला झोला याङ भन्दा लानन ज्ञान देन बुद्धि मुला। जब याङ याङला राङलन इच्छा भन्दा परमेश्वरलाई इच्छा पूरा लाबरी माइमुला। जब याङदा थाहा आदिकि थे योजना हराङलासी सफल ताबरे हमला। जब याङ परमेश्वरलाई योजना प्रति आज्ञाकारी तासेला छनट परमेश्वरलाई सेमला मुला। थेराङमन मूल्य चुकब्दोला तब जेखेन परमेश्वर से याङदा ज्ञान विजय देन मुक्ति रे द्वैबारी हमला मुसुला। हितोपदेश 16 अध्यायला 3 रंगसे लासेला हाजिबै नोन ताम परमप्रभुद पिङ्गो थेन्दे राङला योजना गदे सफल ताला। याङसे लुइरी साँचो विजय तब जेखेन म्राङबरी हमला। जब याङ पुराण रूपरी परमेश्वर द समर्पित ताला थेन्दे याङसे लादोला बिसी सोचप लबाला चट्टा परमेश्वर से याङ ग्याम तिगा सेम लसुमुला थे लसुला। जब याङ परमेश्वर से बिमुला कि याङ जेखेन तिगै सेगादे लबरी हमला वा तिगै ग्लाका देरी चिबरी हमला वा तिगै मिगा देदेन संगत लबरी हमला। याङ परमेश्वर द याङला सागुरो बक्सरी सिमित लाजिबा तामुला देन याङ नङरी गेन गे जिन्न लभ परमेश्वरला क्षमता द सिमित परमेश्वरला जोला परमेश्वर से याङला लुइरी विजय बाबरी हम एफएसी तीन अध्यायला बीस परमेश्वर से याङला गुइरी राङला शक्ति ग्याम गे लमुला ओछे याङसी रिबादेन मनबा भन्दा लानन पिनमुला याङला परमेश्वर याकर ही अलौकिक परमेश्वर मुसुला देन जब याङ परमेश्वर से याङला लुइरी गेन देन शक्तिशाली गे गदे लस्युबा नाङबरी सचिन गम्भीर मुला थे बेला याङसी याङला सोच्दा याङला मिदेन कान छे नाङबरी देन गोबरी हम्बा भन्दा फिर्क्या फराकिलो सोधो मुला परमेश्वर द रङला तर्क दिन सोच अनुसार से लाबरी बाध्य लाबला सट्टा रङला तिन परमेश्वर द समर्पण लस्युगो धेन दे परमेश्वरलाई योजना माइसुगो तिराम परमेश्वरले रङदा थे योजना कति प्रकट लस्युजी विषम थेनी कति त पालन लब्री साहस लस्युगो चुला योजना देन रङदन दीक्षी देन जेन सफलता यङसेला यागर कि जेखेन तरिका हिम्बा आमेन धन्यवाद रङनेदा परमेश्वर से लानन आशिष पिनगई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ
1: टाइम चेक इट्स 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।